0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों विपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज का वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आके महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहेब जी क्यों पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकदा मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहने ने किसी ने अग्यों शस्त्र नहीं उठाया हो सकता वो इलाके दे बदनाम होवे। जबर खां पहला भी लोगों दिया धियां भैणां चुक लिया होवे ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं की है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनू पकड़ लिया।
0: जिनी को एक तुरंग चुढ़ायो एक रीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नू बाहर लिआंदा पठान नू भी खड़ा कर लिया पिंड वालियां नू इकट्ठा करके सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया भई असीं इहनू एवें नहीं लैके जा रहे इहने आह कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनू पकड़ के लै

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लेके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वह घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहलां मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया बहुत

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्ह के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्ह ने कई बारी अपने नाल जंग किया है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने ये सारे इलाके कई बारी इन्ह ने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे,
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे ये इन्ह ने बहुत सारे जंग

0: करके इस तरह बैठ गए, ढिले पै गए, हौली हौली दस पिंड भी पिंड करद्या करद्या मेरा राज खोणगे, फिर थोड़ा खोणगे, फिर साढ़े सारे दे राज खोणगे। इस करके आपां नूं ढिले नहीं पैना चाहिदा।
1: नित प्रत दल सिंगन को आवै, लूट कूट कर मिट हट जावै।
0: हुण नेता प्रति सिंगां दे दल आउंदे ने साढ़े इलाके दे विच, लुट के फिर वापस मुड़ जांदे ने।
1: वाजत रहे बंदूक सदाई, मरे कि मारे फते बुलाई।
0: गोलियां दी आवाज आउंदी रहिंदी आ, कदे किते गोली चल गई, कदे किते मारते, कदे किते मारते। इस तरह ये हमेशा ऐसा कर्म करदे हन।
1: शाह पुकार सुनी इक सारी, लड़ियो आन लश्कर तब भारे।
0: हां, एक बारी बादशाह ने साडी पुकार जरूर सुनी है, भारी फौजां भेजियां हन उसने एक बार।
1: अब कह जाए कहां कह शाहू, निर्बल अदक लखै मन माऊ।
0: सो इस करके हुण जे आपां हुण जाके कहने उत्थे बादशाह नूं, फिर वो जानेगा कि बहुत ज्यादा राजे जिहड़े ने निर्बल हो चुके हन।
1: बार बार की सुने पुकार, कै खिज परै करै बुरे यार।
0: बार बार जो आप इस तरह पुकार करांगे उन्होंने कोले, बादशाह खिजेगा अपने ते साडे नाल माड़ा कर्म करेगा भी तुसी इन्ना भी नहीं कर सकते। एक जाना हैगा, उन्हां पांच चार हजार जाने हैगे आ, थोड़े कोल इन्नियां लखां फौजां ने, तुसी कख नहीं कर सकते। आओ झिड़कां पावेगा।
1: एक सौ जे गुर के सिख मरै, आए हजारों के सुन धरै।
0: जे महाराज का सौ सिंह शहीद हुंदा है, उहदी जगह ते हजारां दी गिनती च होर केस धारण करदे ने, भाव अमर छक लैंदे ने, ककार पहन लैंदे ने। इस तरह साडा उत्थे की मुकाबला है।
1: ने निपटे ने पाए पराजै।
0: सो इस करके ना निपटिए ते ना हारिए।
1: आन लाभ को लखै न काजै।
0: ओ नहीं जानदे कि हान की है, लाभ की है। ओ ना साडे नाल निपटदे मुकदे ने, ना हारदे ने, ना ये समझदे ने कि हां लाभ की चीज है।
1: सुनो ग्रीशो करो उपाय।
0: सुनो ग्रीशो तो पाप पहाड़ी राजे हो, आपां हुण मिलके कोई यतन करिए।
1: यो बिगड़त कारज समदाए।
0: इस तरह तो अपना सारिआं दा काम जिहड़ा है वो बिगड़ जाएगा।
1: सुनत घुमंड चंद तब पाखा, को उपाय तुमने अबलाखा।
0: हां घुमंड चंद राजा कहण लग्या, चलो ये भी ठीक है कि तुसी सानू कहंदे हो, तुसी की सोचिया है, थोड़ा की इरादा है, आपां नूं की करना चाहिदा है।
1: बिना लड़न ते अपर ना को, मिले ना बचो छीन ले सो।
0: सो बिना लड़न तो होर तां कोई रस्ता नहीं है, इस करके वो सारा कुछ अपने तो खो लैणगे, ना कोई मिलना ना बचना।
1: प्रथम शाह टिग बने न जाना, सेना संच काल कमसाना।
0: पहला बादशाह को अपना जाना बनता नहीं है, पहला तो आप फौजा कट्ठिया करिए, फिर कमसाण का जंग करिए।
1: लड़बे कहो निप तरै जे आलस, राज करन की तरै न लालस।
0: सो इस करके जे राजा नूं कहने हैं आलस बड़ी करते हैं, इस करके तुसी राज की जिहड़ी हुण आलस है ना, ये ढिल मठ है, इहदा तुहानूं त्याग करना चाहिदा है।
1: रिप बस होए न दंड बहीना, वदै प्रताप सदंड अधीना।
0: क्योंकि दुश्मन कदे भी दंड तो बिना अधीन नहीं हुंदा, दंड देना चाहिदा है। अते जिहड़ी प्रजा है ना, ये प्रजा की भी एक गल हैगी आ,

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनों दे दल नू मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नू, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नू बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नू, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नू मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नू शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नू, दुबारा जिहड़े इधर नू मुड़े आ रहे सन पिछे नू वापस पहाड़ियां वल नू
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नू देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी दा फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई दा फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल दा फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗੈ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: मैदान जंग दे विच सूरमे अते घोड़े उन्हां दे घोड़िया सने ही सारे पहाड़िए मार दिते।
1: लोथन सो पूरन थल सारा,
0: लोथां दे नाल सारा ही जिन्ना थल सी सारा जितना मैदान जंग सी भर गया।
1: सर्ब ग्रेसर उज लगाए,
0: सारिया पहाड़िया ने अपना

0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहने लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थ उचार,
0: तिना का पद है खालसा। तो इस तरह इन्हों का असि महाराज सच्चे पातशाह कहने अर्थ जिहड़ा है बना के तुहानू सुना दिता है कि खा ल ते सा, ये तीन अखरां दे विच इन्ना कुछ छुपया होया कि जिहड़ा कोई बंदा समझ नहीं सकता। जिवें कहा सी खन जोगी लंग भोग और ग्रहणे मांझ संग्रहणे मांझ, इहदा इह अखर विच किन्नी डूंघाई है। जां खन जोगी कहिंदे खा खालसा जोगी रूप होवेगा, ते खालसा जिहड़ा होवेगा लल्ले तों कहिंदे लंग भोग भाव। खालसा दो चीजां हो गईयां, इक जोग होवेगा भोग होवेगा खालसे कोल, और संग्रहणे मांझ इकट्ठा करेगा खालसा नाम। इस तरह ही सतगुरु महाराज कहिंदे ने इन्हां तुकां दे विच पद खालसा दे अखर अखर ते अर्थ कीते जिहड़े ने ना, वह इस ढंग दे नाल कीते हन। तो जिवें कहिंदे ने जो है खन जोगी, तो जोगी हो गया लंग भोग मैं जां संग्रहणे मांझ, तो इस तरह कहिंदे ने खालसा जोग ते भोग दोहां नूं मिल के विचरेगा। तो खंग दा अर्थ हुंदा नभ, नव तो मराव मुराद हुंदा चिदाकाश। लंग भोग दा अर्थ हुंदा लंपड़ तो पाव, ये संसार दे जिहड़े भोग दे अर्थ इस प्रकार कहना। संग्रहण दा अर्थ है इकट्ठ करना मेल करना। इस तरीके नाल ये सारियां चीजां खालसे दे तीन अखरां विच ही ने। महाराज कहिंदे जे कोई इन्हां नूं विचार करे खा ते ला ते सा, ये तिन्नां विचों ही सारा कुछ ही निकल आउंदा है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने खालस अखर नूं समझना सारयां दे वस दी गल नहीं, पर असीं तुहानूं कुछ अर्थे दे करके दसे हन।
1: चौपाई इमकै तूसन भय गुसाई,
0: इउं कह के महाराज सच्चे पातशाह जी फेर नहीं बोले, फिर चुप हो गए।
1: देखत सब दिस दृष्ट चलाए,
0: देखदिआं सारे पासे महाराज ने अपनी दृष्टि संगत ते चलाई है।
1: लको सुभाए खालसे गुरु को,
0: कहने सुभाव की कहने जो खालसा है ये गुरु रूप है अते गुरु खालसा है।
1: बुझो पुनजो संसे उर को,
0: फिर महाराज कहने चंगा खालसा जी हुण जिहड़ा संसा सी तुहानू वो तुहाडा दूर करता, होर कोई कोई शंका होवे कहिंदे वह भी पुछ लो।
1: श्री प्रभ किम वरतै वरतारा,
0: महाराज ये दसो ये जिहड़ा वरतारा आप जी ने कहा है ये किवें वरतेगा।
1: किम भाणा होवे करतारा,
0: ये वाहेगुरु का भाणा किवें होवेगा सानू कुछ जरूर दस के जाओ जी।
1: समय कलो को होए,
0: कलयुग दे समय विच किवें किवें होवेगा वरतारा वरतेगा।
1: वदे राज नरप कहीं अनसोए,
0: तो इस करके आप जी ने कहा कि राज वधेगा, राजा खालसा राज करेगा, ये राजे बनणगे।
1: हृदय खालसे लालस लहो,
0: खालसे दे हृदय विच ये लालसा है जी।
1: भूत भविखत की गत कहो,
0: आउण वाले समय दे कुछ बचन सानू जरूर सुनाओ।
1: इम सुन सिंघन की अरदास,
0: इउं अरदास बेनती जदों सिंघां ने कीती कि महाराज सानू दसो आउण वाला समा।
1: श्री कलंगी धर कीन प्रकाश,
0: कलंगी धर महाराज जी ने फिर कुछ बचन खालसे दे बेनती करन तों इउं प्रकाश प्रगट कीते।
1: 4,32,000,
0: महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे इह 4,32,000
1: कलू आर बल करी उचारा,
0: कहने भाई वेदा शास्त्रा च उम्र कलयुग की इन्नी लिखी है 4,32,000 साल कुल उम्र, हले 5,000 साल ही लंघिया कलयुग, 5,000 साल च गेड़े खवाते अपने सारिया दे, हुण गाहां हले किवें लंघेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह खालसा पुछ रहा जी, ये खालसा जी पुछते ने सारे भी ये बनूगा की साडा।
1: जिसमें संत होए ब्रह्म ज्ञानी,
0: महाराज कहने ऐसी नहीं गल है जिदे विच बहुत सारे संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख होणगे।
1: सगरे दोख करे जुहाने,
0: जिहड़े रब दे बंदे होणगे रब दे प्यारे होणगे उह सारे जिहड़े दोष ने दूर करनगे लोकां दे।
1: दोहरा ਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਕ ਬਰਕ।
0: ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ

गुरु साहब की ही पूजा करनी है सारे कामों के विच सहज पाठ श्री अखंड पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना यह गुरु घर के कार्ज आप करने ने पहला महाराज नूं मनाउणा तरीके नाल विधि नाल विधि तो भाव के जिवें आपां पाठ करते हैं पाठ करने वाले भी आए छेती नाल भी प्रकाश है आए बाहरों पता नहीं कित्थों आए ने आ किताबें बह गए हम भी पाठ करके आए गुरुद्वारे वो विधियां तो थोनों सीखनी चाहिए सारियां नूं ते इस प्रकार नाल महाराज जी तो रोकते ने कई चीजा तो कि ए जेड़े कर्म ने आ करने नहीं इस तरह केसी इशनान का बहुत ने पता केसी इशनान चौथे दिन तो महाराज का हुक्म ही है एतवार बुधवार रख लो दो दिन रख लो मैं करना केसी इशनान करना जा कोई हफ्ते विच ए दिन रखो तो साढ़े जेडे केसी इशनान ही दस दस दिन नहीं करते है तो उदा फिर विषय विकार प्रवृत्त हो जाना वह कई चीजा देखने वाली होंदिया ने इं जड़िया अपने वलों ही कमिया होंदिया ने पाठ करने आपू फल की प्राप्ति नहीं होंगी पवित्रता का बहुत ख्याल रख्या करो जी पवित्रता है आ सरोवर के जाके पैर पा के खड़ जा उ जल छकी जाने यदा की फायदा होया थानू फिर सरोवर साहब के बहरली पौड़ी के पैरों के उत्ते फिर पहला पैरों से पानी पागे फिर अखा से छिट्टे मारनगे वह सारा कुछ सरोवर च सीटी जाने चूड़ा उतों सिर मर्यादा इन्नी आ भी चूड़ा भर के बाहर आके ना जिधर परिक्रमा है उधर मुख करके फिर चूड़ा छको तो पहला जाके सारा कुछ घाला माला ही कर छड़दे हो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखो मर्यादा विच जे कायम रहोगे पहला भी महाराज ने दस्या सी मर्यादा दियां लीहां ते जद तक रेलगड्डी चलती है उदों तक वह ठीक रहिंदी आ जदों ट्रेन माड़ी जी इधर उधर होगी सारी उल्ट जाती है इस करके मर्यादा की लीह

0: सुपते निसमै सतगुरु मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी कीनो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लैके मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है, उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कि नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे, सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी क है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान

0: चेला होवेगा कोई वो अपने गुरु नु समझाया करेगा जाके नहीं गुरुदेव ए गल इस तरह तुसी हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन्हां गल्लां दा पता भाव हुण भी तां समझाउंदे ने आके हुण भी तां कह रहे गुरु ग्रंथ साहिब जा पिशौर सिंह ते प्यारा सिंह अर्गे उठ खड़े होए सी ते आ हुण होर ही खड़े दसम ग्रंथ दे विरुद्ध होर गल्लां कर रहे ने इही जी तां गल है ये कहने इन्हों नहीं पता है असल तो सानू पता साडियां बुद्धियां ज्यादा कम कर दिया ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलता है कई तो इउं कहंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलती यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खावे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहन तजे काया दुखी जे नहाना छड़ देंगे क्यों नहाँदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जा ये की नहा के लेना है ते जे उन्हों कहो आ रोटी खा लो आ होर चीजा खा लो कहने किथे रोटी महाराज कहने रोटियां खाण नू तकड़े होणगे कलयुग च ओ चीजा खाई जाणगे सारियां जे कह दो इशनान कर लो फिर उत्थे ही डिग पिया करनगे मेरा तां शरीर नहीं ठीक है
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज
0: कहिंदे प्रीति तां होवेगी नहीं लोकां दे विच होर की करनगे कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे इहदे कोल सानू खाण नू मिलदा है जिथों खाण नू मिलेगा उत्थे पैरी हाथ तक लाया करनगे गोडी हाथ लाउणगे यह बंदा बड़ा वधिया जिथों खाण नू ना मिलिया करेगा उन्हूं गालां कढ़िया करनगे
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोकां दे मना अंदर कलयुग दे विच कि विषयां दी गल जे तां विषयां दी गल करो फिर तां जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले गाने गाउण वालियां इस्त्रियां उत्थे दा बेअंत कट हुंदा जिथे कोई भजन पाठ की गल होगी उतों लोग भजया करे एक होर कहें जिमें सारा दिन बंदा बस विषय में ही चित भी जाया करे कलयुग के कदों रात पवे कदों विषय च प्रवृत्त हो कहने जेड़े लोग कवि लोग होणगे उन्होंने जी चंकी कविता होगी कलयुग के लोग चंकी कविता सुनिया नहीं करे कहे एवं फालतू गल कर दे कवि किसी इसत्री की कविता सुना देवे विषय बकारा की भाव माड़े गाने जिमें अजकल चलते ने फलाना गा रहा उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने ते जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है जिथे कोई ढाडी सिंह आउंदे ने इह कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू इह झूठियां गल्लां करदे आ इह उहनां नूं नहीं सुणनगे लोग कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने तां फलाना गा रहा फलाने तां फलाना गा रहा इहनूं दो वी 50 लख रुपया करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा करोड़ रुपया लैंदे लोग जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा कोई कथा वाला कोई कीर्तन वाला भाई जी 151 बढ़िया उहनूं 151 251 उत्थे नाल एक रुपया जरूर वो जिहड़े थोड़े गाउण वाले उहनूं क्यों नहीं कहिंदे 5 लख एक रुपया लैणा उहनूं नहीं कहिंदे एक रुपये नाल क्योंकि उहदा निरादर हुंदा इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उहनां नूं लोग सत्कार दिया करनगे कहिंदा मेरे समें च जिहड़े लोग चंगे होणगे उहनां नूं लोग निंदिया करनगे इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समें च की वरतारा वरतेगा आओ रसना नूं करिए पवित्र।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थ देने के एक तो बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग विच बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़िया गल्लां करनिया, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषय च प्रवृत्त होइए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा नौ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताए पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुत्र।
1: बाणीए अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे, किहड़ा मेहनत करे किहड़ा कम करके खावे, इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जड्डा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी, वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बौले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह की दुनिया हौली हौली बन जाएगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोणगे भी नहीं, ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जाएगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने ओह संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां ध्यान दे धोखे

0: ध्यायो काल फास के बीच ना आयो।
1: पर अंशी पर नार तज नाम सरा है सुवात।
0: इन्हां गल्लां दा ध्यान रखो, तीन चीजां दा, पर अंश खाणी, पराई इस्त्री वल जाना, ये दो गल्लां दा ध्यान रखना। ये तो कर्म करने नहीं, पर धन दोख किस पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े। पराया धन, पर इस्त्री, पर निंदा, इन्हां दा तां भाई त्याग कराउणा। बाकी तीजी गल तैनूं ये दसदे आ, कलयुग दे समें दे

0: महाराज ने इनू करण पर्व लिखण दा ही दिता। बड़ी जड़ी बख्शिश सी ना महिमा वो प्राप्त कीती है। इस तरीके दे नाल छंदाबंदी दी सोहनी चाल इन लिखी। कवरेश ने जो कवरेश केशोदास दा लड़का होया कवि, ये कवरेश ने द्रोण पुरब जिहड़ा है ना ये भाषा करके सुनाया। ते हंस राम जिहड़ा कवि दी पठानका तो पता लगता है कि हंस राम दा अगे नाम आवेगा। इन्होंने करण पर्व का टीका किया महाराज के कहने से, अमृत राय ने नहीं किया। सो हंस राम तां करके करण पर्व आरंभ अमृत कवि ने लिखिया। जिहड़ा अमृत राय है उन्हें लिखिया सी सभा पर्व इन्हें। तो यह पटियाले लाइब्रेरी विच भजवीर सिंह जी कहते पिया है ये करण पर्व सभा पर्व जिहड़ा उन्होंने कवियां ने लिखिया सी। ते हंस राम लिखता है कि 60,000 रुपया मैनू करण पर्व का इनाम मिलिया दसवें पातशाह कोलों। जिवें उन्होंने अपनी कविता च लिखिया, प्रथम किरपा कर राख कर गुरु गोबिंद उदार, टका करे बख्शीश तव मोको 60,000। ये करण पर्व भी पटियाला लाइब्रेरी विच ही पिया है। सो इस करके महाराज कवियां नूं 60,000, किसी नूं 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पहला कवि जी कह आए ने करोड़ करोड़ रुपया भी सतगुरु महाराज ने कईयां नूं बख्शिश कीता है।
1: पावन कवि गिनती मैं नीत रहे निटियर खावे चेत।
0: 52 सोहने कवि, अच्छे टॉप दे कवि जिहड़े सी दुनिया भर दे विच्चों दसवें पातशाह ने अपने कोल रखे। हर रोज उन्हां तों इहदे विच इह किंतु आम लोगों में भावें आ जाए, पर आप संगत जो हाँ यह गल है कि सतगुरु भावें किसी के सिर पर हाथ रख के लिखवा लैन किसी भी चीज़ नूं, जां सतगुरु सीधा लिख देन। इहदे उत्ते नहीं किंतु करीदा हुंदा कि महाराज ने तां कवि तो लिखवाया, जां लोग जिवें किंतु करदे इह तां किसी कवि की बाणी है, इस तरह की गल नहीं है। महाराज दसवें पातशाह लिखवाउंदे ने आप कृपा करके। ये आपां थोड़ा ही अगे चल लईए, ये प्रमाण अपने सामने आप ही आ जाएगा। एक कवि जिहड़ा आवेगा महाराज के पास, जिहड़ा ये दसवें पातशाह नूं कहेगा कि महाराज किथे किसे नूं कविता आउंदी है, जिहड़ा तुहाडे कोल आ जांदा है, जिहड़ा तुहाडा नाम भी लै लैंदा है, उहनूं कविता रचनी आ जांदी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कह के लिखवाइया। यह नहीं हुंदा कि महाराज आप कलम पकड़न ते लिखण। अगे तां हुण जिवें कोई अज दे युग विच बंदा यह कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब दसवें पातशाह ने आप तां नहीं लिखिया दमदमा साहिब, यह तां भाई मनी सिंह ने लिखिया, एवें लोकां च शंका ही पाउणी है। लो शंका पाने आपां हुण, शंका दी कीहड़ी गल है, शंका खड़ी भी पहलां भी तां भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप लिखिया, यह तां गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया हैगा। इउं लोकां जिवें मर्जी शंका खड़ी कर दिओ, दसवें पातशाह कोई भी चीज नूं बोलदे तां आप ही रहे ने भई इहनूं ऐं लिखणा, इहनूं ऐं लिखणा है। उहनां कवियां नूं वडियाई दे दित्ती, चंगा भाई इह तूं लिख। इस तरह सतगुरु महाराज ने बहुत सारियां जिहड़ियां चीजां ने ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تہاڈی جڑی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانوں کوئی پوچھتا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہر ایک نو

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंदबुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा कम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल पुरख सारे साड़ दियां, एक वचन नाल मार दियां, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसवीं दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसवीं ग्रंथ दी बाणी जिन्ने भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने ये चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे हां, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे हां। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी है।
1: जप तप नेचा नारा करह देखत साज।
0: ना कोई जप रहेगा, ना कोई तप रहेगा, ना कोई निश्चा रहेगा। लोग एहे जे बन जाणगे सारे जाने कि लोगों के जिहड़े भरोसे ने वह टुट जाणगे, ते साजबाज जिहड़ा आह दिखावटी बनावटी कम इन्हां दे विच लोग ज्यादा परिवर्तित हो जाणगे।
1: जैसी गुर के भावने भावना तैसी गत होए शक्त।
0: सो जिस प्रकार दी जिहड़ी है ना भावना प्राप्त हुंदी है तैसी शक्ति प्राप्त होवेगी, जिही जी सिख दे विच भावना हुंदी है।
1: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त।
0: इस करके वाहेगुरु सच्चे पातशाह दी शरण ग्रहण करो, इस करके धन गुरु रामदास जी का जाप करो, धन गुरु नानक देव जी कृपा करनगे अथवा परमात्मा की मेहर होवेगी ताइयों कुछ बनेगा। जे निश्चय दे नाल बैठा रहेगा, बहुत कुछ हुंदा है जिहड़ा निश्चय नाल बैठा रहिंदा है, जिन्हां दा निश्चय गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते है, अंत नूं जित उसे दी हुंदी है।
1: वाहे गुरु ए मंत्र जप सगल करेंगे काम।
0: महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने बाकी कोई कुछ करन दी लोड़ नहीं है, मूल मंत्र है, जप जी साहब है, फिर श्वास श्वास आखो।

सतगुरु कहते कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दो जी जागदी अकादरता बख्शियो क्वास इना आप बजुर्गा ने वेखे खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु गलो वाहिगुरु खूह दे विच एक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट एक खूह बना आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन अकादरता बख्शे इस माल नूं तू आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन जोगो सरवण कीता इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं जोग हां कौन किनू जो मन नोड़ो जोगो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दाला टिंडा खिंचन मन बलद बनाओ मन तो साडा सिमरन करद भी दौड़ता रहा है सब कहते ने तू मन जोड़ के इना टिंडा खिच अगे जाके कहने अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानू पता पिंडां दे रहण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे साहब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आसा की टिंडा की माला ए मन नो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे तो मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहे क्यारे ने आखो सतनाम श्री कद के बोलो सतनाम महाराज खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहे कहते अखा नाम जपन वाले दमृत ना भर दें अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बोलने लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत भर जी गल कर लगता वा क्या फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नो इस श्वासा की माला बना मगर ए जे बरतना होया जे मन तू ना जोता सिमरन मन ना जोड़िया टिंडा की माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कुछ नहीं मन नूं जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओ तो गज के बोलो ना तो

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट लिए शांत चित हो के प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

तो सवाल जवाब पूछना होते बहु परपंच कर पर धन लियावे सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले कपट ना कीजे अंतन बेड़ा तेरे जी पे लीजे छिन छिन तन छीजे जरा जनावे एक तन तन करके तेरा शरीर कमजोर हो रहा है बढ़ेपा जितदा जांदा है बढ़ेपा तेरे दंदा तो तेनू दसी जांदा तू बुढ़ा हो गया है तेरे कन्ना तो दसी जांदा तू बुढ़ा हो गया है जदों तेरी ए हालत होगी तब तेरी ओक कोई पानी होना पावे तेरे बुक दे विच तेरे किसे ने पानी नहीं हो पाउणा तू तरसना ही ते तेरे किसे आखे नहीं हो लगना ते साहब जी पिछे जाके कहिंदे कहत कबीर कोई नहीं तेरा किते अंदरों इत्थों कोई आख दे कहत कबीर अपने आप नूं आखो कहत कबीर अजे नहीं अंदरों आख्या कहत कबीर कोई नहीं तेरा कहत कबीर कहत कबीर कोई नहीं तेरा कहत कबीर कोई नहीं तेरा कहत कबीर कोई नहीं तेरा इथे कोई तेरा नहीं आख्या फिर की करा कहिंदे हिरदे राम की ना जपे सवेरा अमृत वेले उठिया कर परमेश्वर की बंदगी करिया कर एक बचन होर बड़ा सुंदर गुरु रामदास महाराज पातशाह की कृपा नाल बाबा कबीर जी ने कहा है रे मन तेरो कोई नहीं बोलो रे मन इथे तेरा कोई नहीं हो खिंच ले जिन भार गड्डे दे अगे पशु जूता हुंदा वा ते गड्डा खिंच रहा हुंदा है इतना ही एक परिवार का मुखी कहिंदा वा जे मैं हुण पाप ना करा ते इन्हां नूं रोटी कितरा खवाऊं खिंच ले जिन जिन्हां दा भार खिंची फिरदा है जिन्हां लई पाप करदा है ए ते बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार ए ते संसार इतना दा धीआं पुत तेरे घर च इतना रह रहे ने जे को आलणे विच पंछी बच्चे देंदा है ते लिया लिया के बेचारा कितो दाने चुकदा अपने मुंह च नहीं पाउंदा ध्यान दियो पंछी वाल कदी वेखियो जिथो जिथो दाने चुकदा वा ना अपने अंदर नहीं नगाउंदा मुंह दे विच पा पा के दाने कितो कितो चुक के लिया के ते बच्चियां दे मुंह विच पाउंदा है मगर बच्चे जिदन वड्डे हुंदे ने आपो अपने राह नूं उड जांदे ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੜਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟੀਆਂ ਵਾਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਇਹ ਸਾਈ ਬਾਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਦਣ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ

0: सैवं गुरुपद साध जप पाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करो कृपा सारे आखो पाद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी सच
0: जुड़ के आखो जी आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी

0: काहे न खंडस अवगुण मेरा। किते एक बार डिडकलियां ले ले क्या को जैसा बालक पाए सबाई, लख अपराध कमावे करे उपदेश चिड़के बो पाती बोड़ पिता गल, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे, सोते अपराध करत है जेते जननी चीत न राख सतेते। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। बड़ा सुंदर बचन है एक बार आखो सतनाम श्री, ए बचन बड़ा प्यारा लगता है, ए बचन बड़ा खा जाता है जीवन नूं। ए बचन विच मेरे साहब कहिंदे ने तू मेरा पति ते मैं तेरी पत्नी, तुम्हें सुकंत हम तुम बीच भयो नहीं कोई। बोलो हम तुम बीच, फिर कित्थों आ कितना कढोगे बाबे, कितना कढोगे पंडित नूं विच्चों, कितना कढोगे सैयद बुखारी नूं विच्चों, कितना कढोगे पुछां वालियां नूं विच्चों, कितना कढोगे धागियां वालियां नूं विच्चों। उत्थे ते बापू जी बाबा कबीर जी कहिंदे हे मेरे निरंकार, तेरे ते मेरे विच तीसरा कोई नहीं। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। हे मेरे साहबा तू मेरा पति ते मैं तेरी पत्नी, ते हुण तीसरा ते है कोई नहीं। इस करके किसे दी आस उत्ते ना जियो, आप अपने पति परमेश्वर अगे बेनती करो, वह सदा सुनदा वा, वह गल नाल लाउंदा ए, वह प्यार करदा वा, वह भुलिया आप समझाए सी। जे ए भी मन विच आ जाए कि मैं भुलिया बड़ा वा, ते आ बचन आसा दिंदा है, आसरा दिंदा वा कि भुलिया आप समझाए सी। बोलो भुलिया, फिर एक बार विश्वास विच आखो भुलिया, जे असी भुल भी जाइए ते समझा लैंदा है। कर उपदेश झिड़के बो भाती बहुत पिता गल लावे, ना किसी दे आसरे उत्ते जीवन बतीत करो। बाबा जी कहिंदे जिस तरह रात वड्डियां विच पासे तुख जांदे ने ते थक जीदा सुत्या, इस तरह किसी दे बूहे अगे बैठिया जीवन आकेवे नाल भर जांदा है, प्राप्ति कोई नहीं हुंदी। हां जी
1: फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आईड़िया।
0: एक बार अपने परिवार दे भले लई ते पंथ दे भले लई इस गुरु घर दी चढ़दी कला लई आखो सतनाम श्री वाह। प्यार करन वालियां रूहां रोम रोम चो आखो सतनाम श्री वाह। बाबा फरीद जी पहले शब्द विच भी जीवन दी जाच दसदे, कहिंदे ने वेखो किसे दे बूहे अगे बिके जीवन बतीत ना करियो। बाबा जी अगे जाके ते इतना दा भी एक वचन कहिंदे ने, बार पराया बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले। गुरु अर्जन देव साहब नूं पुछो जे तू तुठा किरपा नदान, अगे पढ़ो ना दूजा, बस दूजा पाओ ही पवाड़ा है, जेदे अंदर दूजा पाओ आ गया बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल। अगे जाके कहिंदे जे एक होए तां उगवे, जे एक दे नाल कोई जीव आत्मा जुड़ी आ ओदी कीती बंदगी फलदी, ओदी कीती सेवा फलदी, ते जे दूसरे दे थां किते जुड़ के कर रही आ ते कहिंदे अब क्यों उगवे। मैं ते बचन कर रहा सां गुरसिखां नूं, कहिंदे जी छोलियां दी दाल बनाई ते मैनूं पता सानूं पता लगा सी कि तुसीं वाई चीज खांदे नहीं, ते मैं कहा मेरे गुरमुखो भराओ छोलियां दी वाल बड़ी छोलियां दी दाल बड़ी वाई हुंदी जे। आखण लगे जी नहीं जी छोले ते गर्म हुंदे ने, ते दास ने बेनती की थी, हां जदों छोलियां दा दाणा साबत हुंदा है छोलियां दी सब्जी गर्म ते छोलियां दी दाल जिहड़ी अत वाई क्यों, ध्यान दिओ क्यों, दो हो गई, की हो गई, दुफाड़ हो गई ना, दुफाड़ हो गई। छोलियां दा एक दाणा पैली च सुट्टो उगदा है, मगर बोरी भर के एक पैली विच दाल दी बीज दिओ दाल ते उगनी नहीं क्योंकि दो हो गई, की हो गई, दो हो गई ना, दो फाड़ चीज ते कोई भी नहीं उगदी। इसे तरह जेड़ा एक परमेश्वर नूं भुल के किसे होर देवी देवते पीर पकंबर दी आस रखदा वा ओदी बंदगी कदी उगदी नहीं, ओदा फल कदी लगदा ही नहीं। ते इत्थे आप जी सरवण कर लियो। बाबा जी अगले बचन दे विच कहिंदे ने फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़ियां, ये भी जीवन की जात आ। बाबा जी कहिंदे जे मेरे पल्ले चार दमड़ियां किते होण, मेरे कोल कोई वस्तु होवे ते मेरे घर कोई मित्र आ जावे ते ओ आखे सजना ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜੇ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਪਾਸਾ ਵੱਟ